तुम दया कतहु ना धावु शरण पावो करना मैं प्रभ कर मया समर्थ अकथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीचा सट कटोर कुलहीन व्यापत मोह कीचा मल भरम करम अहं ममता मरण चीत न आवाए वनता विनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे किसै जो बन बदे जरुआ दिन हारे संग मीचा बिनवंत नानक आस तेरी सरन साधु राख मीचा राख नीचा परमे जन्म अनेक संकट महा जोन लपट रहे हो ते संग मीठे भोग सोन परमत पार अगंत आयो बहु परदेस तायो अब ओट धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरण आयो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कशुना हुआ होना सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरे पौन नाम त्रीक उधारे भगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुने सरवण सुन सरवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे वसुद कागद बन राज कलमा लिखन कौ जे होए पवन बेअंत अंत ना जाए पाया गही नानक चरण सरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ता की सरण गही निरपो पै पुराण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीता सुरजन इष्ट बंद पजाणिया गह कंठ लाया गुरु मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाय कही प्रभु कनक लख ठाकुर नानक तिस गई अमृत बन संसार सहाई आप राम नाम उरहार बिके दिवस गए गत परम विकार बिन से जून आवन सब रहे अगन सगन भय शीतल सात अंचल गै रह गोविंद गोपाल दया समत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याय पूर्ण साधु संग पाई परम कते जय देखो ते संग एको रव रिया कट कट वासी आप बरलेख ने लिया जल थल महियल पूर पूर्ण कीट जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया आदि अंते मद सोई गुरप्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणित जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर नानक हरेक नानक रव रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप टरे दुख भूक दरिद्र नाठे प्रकट मग दिखाया मिन साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया आदेख दर्शन इच पुनी कुल संभूहा सब तरे दिन सुरैन आनंद नंदन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवा शंत कर सत्वा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमण निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत।

हृदय प्रभ बिसरना ही एक खना तज मान वो विकार मन का कलमला दुख जारे मिणवंत नानक सदा जागे अरदास संत प्यारे मेरी से जड़िए आडंबर बनया मन अनंत पया प्रभ आप सुनया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख पागे प्रभ प्राण मन तन सब हरे मन इच्छ पाई प्रभ त्याई संजोग साहा सुभगनिया बिनवंत नानक मिले श्री तर सगल आनंद रस बने रस बनिया मिल सखिया पुछो कह कंत निशानी रस प्रेम परे कछ बोल न जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगमंत न पावहे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूर्ण अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहेलड़े हर रा गावन लागे साजन सरसियड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्य प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया सुख दिवस आए सहज पाए सगल नित प्रभ पागे बिनवंत नानक सरन स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवा उठ वंज वटाउड़िया तह क्या चिर लाया मौलत पुंडड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तुह माया करे पाप अमित्या तन पसम ढेरी जमे हेरी काल बपुड़े जितया मल जोबन छोड़ वैसी रहो पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया नै जाए किरत मिटाया फाथ्यो मिर्ग जिवै पिख फाथ्यो बिरग जिवें पेख रैन चंद्रायन सुखै दुख भय नित पाप कमायन पापा लुभ हंकार माता गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे न मिटे आवन जायन मिठे मख मुआ क्यों लय उड़ारी हस्ती गर्त भया क्यों तरिय तारी तरन दुहेला पया खिन मैं खसम चितना आयो दुखा सजाई गंत नाही किया अपना पायो गुजा कमाना प्रकट हुआ ईत उत खुआरी नानक सतगुर बाज मुठा मन मुखो हंकारी हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी बलबुद ज्ञान ध्यान अपना नाम जपाया सात संगत आप हुआ आप जगतराया राख लिए लखन हाले सदा निर्मल करनी नानक नरकना जाहे कबू हर संत हर की सरणी आसा महला पंजवा वंज मेरे आलसा हर पास बिनंती रावो सभा परड़ा प्रभ संग सोहंती संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सरैन रैणी गावी है रैणी रावी है सास सास चितार जीवा प्रभ पेक हर गुण गावी है बिरह रजाया तरस पाया मे उदिष्ट सिचंती बिनवंत नानक मेरी छपुनी मिले जिस को जंती नस वंजो हो किल विखो करता घर आया दूते दहन ब्या दूते दहन भया गोविंद प्रगटाया प्रगटे गोपाल गोविंद लालन सास संग वखाणया अचरज डीठा म्यो गुठा गुरु प्रसादी जाने मन शांत आई वजी वधाई नह अंत जाई पाया बिनवंत नानक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक ना डिठेड़ा नरक ना डिठड़ा डिठड़िया सिमरत नारायण जय जय धर्म करे दूत पय पलायन धर्म तीज सह सुखी है सासंग हर पजय कर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सप्तजे गह कंठ लाए गुरमिलाए गोविंद जपत अकायन बिनवंत नानक सिमर स्वामी सगली आस सगल आस पुजायन निध सिद्ध चरण गए ता के हा काड़ा सब किस आ सब किस वस दिसे सो प्रभु असाड़ा गै पुजाली ने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापिया म्यो हरस चाखिया साध संगे नाम रंगै रन जीत वड्डा आखाड़ा बिनवंत नानक सरन